0: क्या है कि स्निक की कर रहे हैं, नीचे देख रहे हो। अब बंद करो, अब बंद करो।
1: ओ सब दी बच गई, मेरी भी बच गई।

0: hear, feel the sound of NTN Radio 89.1 FM.
1: घुंघरू की झंकार, खनकती तुम्हारी आवाज, गीत
0: हेयर फील द साउंड ऑफ NTN रेडियो 89.1 FM।
1: घुंघरू की झंकार, खनकती तुम्हारी आवाज।

सात सुरों के बीच सातवां आश्चर्य दादा मन्नादा। सात सुरों को 7,000 तरह का रूप देना जो सिर्फ आप ही कर सके। तुम गुणी हो, तुम द्रोणाचार्य हो, तुम तानसेन हो, तुम बैजू भावरा हो।

मेरे गीतों को सुनने वालों, संगीत की दुनिया के दोस्तों, मैं अभिजीत तब तक जीत नहीं सकता जब तक आपके दिलों में ना बस जाऊं। बस इतना सा ख्वाब है। आप लोगों को शत शत प्रणाम और शुक्रिया। मैं शत शत प्रणाम करता हूं उन महान गायक और गायिकाओं को जिनकी आवाज की बदौलत हिंदुस्तान पूरे विश्व के संगीत में हमेशा शहंशाह बना रहेगा। मुझे गर्व है कि मैं भी उसी देश की एक आवाज हूं। हमारी दीदी लता जी, मैं उन चंद किस्मत वालों में से हूं जिन्हें सरस्वती के साक्षात दर्शन हुए हैं। आपके सुरों को सुन सुनकर, सीख सीख कर इस काबिल बन सका कि चंद नगमों में आपके साथ सुर मिला सका।

कहा कौन है तेरा मुसाफिर, जाएगा कहां। सचिन देव बर्मन आप मुसाफिर थे, मगर आपने खुद मेजबान बनकर संगीत के मुसाफिरों की वो मेजबानी की कि आप चले गए, मगर आपका संगीत हमेशा एक मेजबान बन गया। संगीत की दुनिया के हर मुसाफिर का पड़ाव और उसकी मंजिल आप हैं। शैलेंद्र का मधहोश गीत, रफी साहब की मधहोश आवाज का आलम।

मदहोशी, वो मस्ती भरी आवाज, एक सूने अंधेरे कोने की सिसकियां, तुम्हारी आवाज। तुम शायर की शायरी हो, तुम एक कलाकार की कल्पना हो, तुम दिल की धड़कन हो, तुम जवां दिलों का जोश हो। तुम ना होते तो मैं ना होता, तुम गुरु हो, तुम गुरु हो, तुम्हें शत शत प्रणाम।

जमाना बदलता रहा, संगीत बदलता रहा, सुनने वाले भटकते रहे, मगर हेमंत कुमार तुम्हारी आवाज हमेशा गूंजती रही। तुम्हारी आवाज ने भटकतों को एक नई मंजिल दिखाई, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा

0: मैं आज जिस मुकाम तक पहुंचा हूं, आपकी मोहब्बत और दुआओं की बौछारें मुझे उसी मुकाम पर अभी तक संभाले हुए हैं। मुझे लड़खड़ाने नहीं देती, मुझे डगमगाने नहीं देती आप लोगों को शत शत प्रणाम और शुक्रिया।
1: Hear, feel the sound of NTN Radio 89.1 FM.
0: युगों से आज तक हर युग में जब जब संगीत का युग आया, जब संगीत में क्रांति आई, आशा दीदी की आवाज ने उन क्रांतियों को हर मोड़ पर एक नया रास्ता दिखाया। तुम ही संगीत की जगह हो, तुम ही संगीत की क्रांति हो, ये सफर जारी रहेगा। दम मारो दम, मिट जाए गम, गम की दवा तो आपकी आवाज है, गम की दवा शराब नहीं।

0: सोनी एक शेर यार है मेरा खुद का अपना है सुना
1: चल सुना
0: तो सुन आपकी निगाह ने कहा तो कुछ जरूर है, हाँ। है, है?

0: डर लगता है, जाने हमारा क्या होगा।
1: मीना, तुम मुझसे मोहब्बत करती हो ना?
0: ये भी कोई पूछने की बात है?
1: तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, मैं तुमसे। बाकी सब किस्मत पर छोड़ दो।